0: 89.4 रेडियो था संचार स्टूडियो टाइम।
1: इट्स 9 एएम।
2: हिजो जस्तो आज छैन, आज जस्तो भोलि रहने छैन। समय गतिशील छ, जब समय बोल्न थाल्छ संसार सुन्न थाल्छ। यो हो था संचार नेटवर्क, समयको आवाज, समयको आवाज।

बजेट 41 अर्ब 13 करोड़ पर्सि बुधवार सम्म लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम का तराई क्षेत्र में गर्मी धेरै हुने लुम्बिनी में शांति पदयात्रा सहित जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न र विश्वकप फुटबल में स्वीडेन ने ट्यूनिशियालाई 5-1 गोल अंतर ले हरायो। अपराह्न 5 बजे हालखबर सकियो। सूचना सन्देश र मनोरंजन का लागि सुन्दै रहनु होला रेडियो लुम्बिनी। नमस्कार।